कोई बन्य तहरा मन कोई बन्य तहरा मन कोई अरमवई मन कोई अरमवई मन कोई अरमवई मन वाल कोई